गैमा बिगमालीले जुजुकेरा कहाँ मैले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहुमा त ढोकी दे जन्म फ्लाटेर अनि त करिन दुई त धनको भतुवा।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।